दुख पीड़ित रोजा पूरे एनक चलना मा एनक पीड़ित रोजा पूरे एनक चलना।